दो प्रभु चित्र मेरा निर्मल कर दो प्रभु चित्र मेरा विषय वासना धर पबावना विषय वासना धर पबावना हर कर दो उज्ज्वल

सिधि राम तब सिधि सुलभ जपत जिसु नाम। भगवान शिव जी से जो पार्वती आई रेवरेंस आई बाउ टू दैट श्री राम एज अ चाइल्ड।